गुड मॉर्निंग एवरीवन और नमस्ते, नमस्कार, सीताराम और अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू योर अर्ली मॉर्निंग एडिशन ऑफ शबनम एंड स्पेशली डिजाइंड टू असिस्ट यू विद योर अर्ली मॉर्निंग चोर्स एंड टू पुट यू इन ए पॉजिटिव एंड गुड फ्रेम ऑफ माइंड and to also ignite sparks of spiritual inspiration to you and your loved ones. Aurai bahare ba karunya chand roz dekhlo iska tamasha chand roz aur ai musafir kuchaka samaan kar is salame hai basira chand roz. From Trinidad and Tobago, my name is Moeen Mohammed, now extending to you a very warm welcome to join my youthful and brilliant producer-presenter, Richard Aziz.

0: तुम्हें कैसे बताऊं कि पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। कुछ ही दिनों के लिए जा रही हूं, बारिश खत्म होने से पहले वापस आ जाऊंगी।
1: प्रॉमिस?

0: तुम्हें कैसे बताऊं कि पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। कुछ ही दिनों के लिए जा रही हूँ, बारिश खत्म होने से पहले वापस आ जाऊंगी।
1: प्रॉमिस?

0: तुम्हें कैसे बताऊं कि पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। कुछ ही दिनों के लिए जा रही हूँ, बारिश खत्म होने से पहले वापस आ जाऊंगी।
1: Promise?

अरे मेरा भी एक सुंदर साजन था, उसकी आंखों में नशा, बाजू में ताकत और दिल में हिम्मत थी। बिजली की तरह नाचता हुआ मेरे पास आता था, गाता था, नाचता था।

0: आप चलते हुए गाओ।
1: रिम झिम रिम झिम छम छम गुन गुन तिल तिल पल पल रुन झुन रुन झुन
2: रिम झिम छम

0: पन
1: बोलो
2: चारु चंद्र की चंचल चितवन।
1: शाबाश, आगे आगे।
2: बिन बदरावर से सावन।
1: शाबाश, चलो आगे आगे आगे बढ़ो।
2: चारु चंद्र की चंचल चितवन, बिन बदरावर से सावन।
1: फिर से चलो।
2: चारु चंद्र की चंचल चितवन, बिन बदरावर से सावन।
1: शाबाश, आगे आगे आगे।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।